जो पावे मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जे वडयावर ना कोई। तू जोग जोगे को सदा सदा तू एको जी, तू निश्चल करता सोई। तुदे आपे पावे सोई वरतै जी, तू आपे करें सो होई। तुदे आपे सृष्ट सब उपाय जी, तुदे आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जान होई। आसा महला चौथा, तू करता सियार मैंडा साई। जो तो पावे सोई थीसी, जो तू दे सोई हम पाई रहाऊ। सब तेरी तू सब ने ध्याया, जिसनों कृपा करें तृणामृतन पाया। गुरमुख लाधा मन मुख गवाया, तुझे आप विछोड़या मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़या संजोगी मेल। जिसना तू जाना सोई जिन जाने, हर गुण सद ही आख वखाण। जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा वरन कोए। तू कर कर वेखें जाने सोए, जिन नानक गुरमुख प्रगट होए। ऐसा महला पहला, तित सरवरडे पहिले निवासा। पानी पावक तने किया, पंकज मोह पागनी चाले। हम देखा तें डूबी अले, मन एक ना चेत समूड मना। हर बिसरत तेरे गुण गले आ रहाऊ। ना हो जति सती ने पढ़या, मूर्ख मुगधा जन्म भया। प्रणवत नानक तिन की शरणा, जिंतु नाही विसरिया। ऐसा महला पंजवा, भई प्राप्त मानुख दे हुरिया। गोबिंद मिलन की है तेरी बरिया। अवर काज तेरे कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग पवजल तरण कै, जन्म ब्रेथा जात रंग माया कै रहाऊ। जाप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। कभियो बाच बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मान रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सभय तुम कावो। आप हां दे मोए बचावो, सुखी बसे मोरो परिवारा। सेवक सिख सभय करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करे। सब बैरन को वा संघरे, पूरन होए हमारी आसा। तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं। जोबर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिये, चुन चुन शत्रु हमारे मारिये। आप हाथ दे मुझे उबरे है, मरण काल का त्रासन वरे है। हो जोसदा हमारे पछा, सिरियस तो जो करियो रछा। राख लियो मोय राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बवतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताए हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैन जशन उपजायो। आदु अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जने आप सवारी। सेवकन को शिव गुण सुख दियो, शत्रुन को परमो बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृढ़ कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने।

जानत महा मोड़ कछ भेद न जानत, महादेव कौ कहत सदा शिव, निरंकार का चिन्हत न पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पेन पेन तुय तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कई पूपा, अंडज जेरज से तज कीनी, उत पुज खान बहुर रज दीनी। कहूं फूल राजा हुए बैठा, कहूं समट पयो शंकर कैठा, सगरे सृट दिखाए चंपव, आज जुगा स्वरूप से अंपव। आप रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार सिख संघरो, दुष्ट जिते उठवाते उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे अस तुझ तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुख्त है मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट नहीं आए हैं, रक्षा होए ताए सब काला, दुष्टिया रिष्ट ट्रै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाय ने हरे हो, ताके ताप तन कमो हरे हो, रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शास वे सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांस ते ताहे उबारा, जिन नर नाम तिहारू कहा, दार दुष्ट दुख ते रहा। खड़केत मैं शरण तिहारी, आप हां दे लियो बारी, सर्ब ठोर मोह सहाई, दुष्ट दुख ते लियो बचाई सवैया।

सिमरत शास्त्र वेद सब है, बो भेद कहें हम एक न जानियो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहो सब तो हे बखानियो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार, बाहें गए की लाज वास गोविंदास तुहार। राम कले महला तीजा आनंद, एक ओंकार सत गुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सत गुरु मैं पाया, सत गुरता पाया सहज सेती। मन वजियां वादाइया राग रतन परवार परियां, शब्द गावने आईया शब्दोता गावो हरि केरा। मान जिने वसाया कहे नानक आनंद हुआ, सत गुरु मैं पाया। ए मन मेरे आ तू सुधारो हरनाले, हरनाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार यो करे तेरा कार्ज सब सवारना, सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदारो हरनाले, साचे साहिबा क्या नाही कर तेरे। करता तेरे सब किश है जिस दे सो पावे, सदा सिफत सला तेरी नाम मन वसावे। नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे। साचा नाम मेरा आधारू, साच नामे आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटो, जिस दियां आए वडियाइया, कहे नानक सुनो संतो शब्द धरू पे आरो। साचा नाम मेरा आधारू, वाजे पंच शब्द तित कर सपागे शब्द वाजे, कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर करम पाया तुद जिन को, से नाम हर कै लागे। कह नानक ता सुख हुआ तित कर अनहद वाजे। आनंद सुनो वट पागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुने सच्ची बाणी, संत साजन पय सरसे पूरे गुरते जाने। सुनते पुनीत।

जे को खावे जे को पुंछे तिस का होए उधारो ए वस्तु तजी न जाई नित नित राखुर तारु। ताम संसार चरण लग तरिये सब नानक ब्रह्म पसारु। श्लोक महला पंजवा। तेरा कीता जातो नाही मैनू जो की तोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पयोई। तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थी वे हरिया। तरस

रसना दे प्रसाद सुसह दे बसना दे प्रसाद हस कर चढ़ाए दे प्रसाद संपूर्ण फैलाए जे प्रसाद परम गुर पावे हे जे प्रसाद सुसह समावे हे आसा प्रभ त्याग अवर खत डाकू कर प्रसाद नानक मन जागो।

ब्रह्म ज्ञानी कह दृष्टमान जैसे राज रंग को लागे तुरपवान। ब्रह्म ज्ञानी कहती देख जो बसता को खुद कु चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का एक नाव नानक जो पाव का सहस पाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मन लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रगास जैसे तारी उपरे आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सतर समा ब्रह्म ज्ञानी कह नाइबमान। ब्रह्म ज्ञानी उसते ऊंचा मन अपने है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जिन भय नानक जिन प्रयाप करे। ब्रह्म ज्ञानी स्वर किरीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब परमया ब्रह्म ज्ञानी ते काश बुरा न पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसे। ब्रह्म

ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी फनी नान ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी सलोक गुरुदारे जो अंतर ना सर्प मै पेखे भगवान निमख निमुख ठाक नमस्कार नानक ओ पर सगन स्तारे अठ पदे मिथ्या ना ही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्स पार त्रै रूप न पेख नेत्र साध के टैर संत संग हेत करण सुने काउ की निंदा सबते जाने आपस को मंदा गुरपुर साहब विख्या पर हरे मन की बासना मनते टरै इंद्री जैत पंच तो तेरा हित नानक उठ मदे खैसा परस बैसनो सो जिस उपर सो प्रसन्न विष्णु की माते होए पैन कर्म करत होवे नि कर्म तिस बैसनो कर निर्मल तरम काहू फल की इच्छा नि बचै केवल भगत कीर्तन संगराचै मन तन अंतर संग पार सब उपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवर नाम जपावे नानको बैसनो परम गत पावे भगवती भगवंत फसकर अंग सत्यागे दुर्का संग मंते बिनसे सगला परम कर पूजे सगल पा ब्रह्म सार संग पापा मल खोवै तिस भगवती की मतु तू होवै भगवंत की टहल करे नतनीत मन तन अर्पै बिशन प्रीत

जपै को नाम, जो जो जपै तिसकी गत होए, सा संपावे जन खोए, कर कृपा अंतर उतारे, पास परे दुमुत पाथर को तारे, सब रोका खुद नाम, कल्याण रूप मगर गुण काम, काहु जुगत कितै न पाए धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म, जिस कै मन पाब्रह्म कर निवास, तिसका नाम सत राम दास, आत्म राम तिस नदरिया दास, संतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान सो दास, दरगे प्रवान अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सो जी पराए, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक राम दास, प्रभु की आज्ञा तुम ही तावे, जीन मो सुख कहावे, तैसा हरक तैसा सो सदा नंद, तैनि ब्यो तैसा स्वर्ण, तैसे समाटी तैसा अमृत, तैसे विखाटे, तैसा मान तैसा अपमान, तैसा रंग तैसा राजान, दुप्रताय साई जुगत नानक को पर कहिए, जीवन मुक्त है,

के रंग जैसी मत देता सा प्रकाश पार ब्रह्म करता विनाश सदा सदा सदा दया सिमर सिमर नान पय निहार सलोक है ओसर करे अनेक जन अंत न पारा पा नानक रचना प्रवृति बहुपिज अनुप्रकार पदे कई कोट हो पुजारी कई कोट चार पारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन प्रमेय दासी कई कोट

पंखी सर्प उपाय, कई कोट पाथर बिरखन बजाय, कई कोट अपन पानी बसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नखेत्र, कई कोट देव दानविंदर सशत्र, सरस मारी अपने सुतारे नानक, जिस फायत तस नस्तार, कई कोट राज सतम सत, कई कोट पे प्राण सिमत रसास्त, कई कोट कीर्तन सुमंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट खेतर जी पै, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थी पै, कई कोट जाख किन पचा, कई कोट भूत परे सुकर मिर्गा, सबते ने सब ते दूर नानक त्रया भरपूर, कई कोट पताल के वासी, कई कोट नरक सुरक निवासी, कई कोट जन्म जी पै मरा, कई कोट बोझो नी फिराय, कई कोट बैठ थी खाए, कई कोट काले थ पाए, कई कोट किए तनवंत, कई कोट मैं चंत,

कई कोट दर्शन प्रप्यातन कुमिर प्राभ्य विनाश कई कोट मांगे सत्संग पाप ब्रह्म तंडा का रंग जिनको होए आप सो प्रसाद नानक ते जान सदा तन तन कई कोट खानी अरखंड कई कोट का ब्रह्मांड कई कोट होए अवतार कई जो किनो विस्तार कई पार पसरो पसार सदा सदा एक अंकार कई कोट किन बुपान प्रवते हुए प्रमा समाज ताकांत न जाने कोई आपे आप नानक प्रस होए कई कोट पाप ब्रह्म के दातन होते आत्म

कोट नाम कुन कावे आत्म रास सो सा समावे अपने जन को सा सा समारे नान कोई परमेश्वर के प्यास लोक करण कारण प्रवी कह दूसर नाई कोई नानक तिस पर हारणे जर थर महिर सोय अठ पदे करण करावन करने जो का जोत पावे सोई हो का खिरमे थाप थापन हारा अंतने किस पार बारा हुक्मे तार अतर हावे हुक्मे उपजा कुम संभावे हुक्मे उचनी प्यहार हुक्मे अनकरंग प्रकार कार कार देखे अपनी वडियाई नान सब मेरे समाय परा पावे मानक गत पाए प्रपाविता पात्र त्राय प्रपावे बिनसा तेरा खे प्रपाविता हर गुण पाख है प्रभ पावे तम पत उदारे आप करे अपन विचारे दोहा श्रिया का आप स्वामी खेल बुक्से अंतर जामी जो पावे सो कार खरापे नानक दृष्टि अवन आप है कहो मानक ते क्या हो आपे जो ते पाए सोई खराब है इसके हाथ हुए तन सौख से रे जो ते पावे सोई करे अन जानत बिखे मैं रचा जे जानते अपने आप बचाए परमे फूला दैसता विनिम कुमार चार कुंड प्रयाग कर कृपा सपनी पाते नानक ते जन न मिलाए

संत का दुखी सदा फिर संत का दुखी किसे करे मेर संत के दुखी को डान लाके संत के दुखी को सब त्याग संत का दुखी मांगकारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जन्म मर संत की दुख ना सोते डर संत के दुखी को नाई ठाव नान संत पवित्र दे मदाय संत का दुखी अद बीते टूटे संत का दुखी किते काज न पहुंचे संत के दुखी को ध्यान परमाई संत का दुखी उजर पाए संत का दुखी अंतर ते थोता जो सास बिना मृत के लोता है संत के दुखी की जड़ किसना अपन बीज आपे खाए संत के दुखी को न रखन हार नान संत पवित्र दे उबार संत का दुखी उबल लाए जो जाल भी हो न मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं रह जाए जो पाप की दनी त्रापे संत का

जो तिरपाए सोई थे या संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी खुदर के मृस जाए, संत का दुखी सदा से काय, संत का दुखी न मर न जीवाई आए, संत के दुखी की पूज नासा, संत का दुखी और चरण निराशा, संत का दुख न तटे कोई जैसा, पावित ऐसा कोई होए, पिया कीर्तन मिटे कोई नानक जाने सच्चा सोए, सब काट तिसके उकरणे हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उत करो दिन रात, सत्य अवसा खिला सब कछ वरते, तका किया जैसा करे तैसा खोती, अपना खेराव करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनो कृपा करे तसे अपन नाम देव, भागी नानक जन से सलोक, तजो सियान सुर जनो सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पो जाय अठ पो दे, मानु की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान जिसका दिया रहे हकाए, बहन तिसन रखे आए मारे राखे को, आप मानक कह किशनाई हार, तिसका हुक्म भूसो खोए, तिसका नवरा कंठ प्रोए, सिमर सिमर सिम प्रस होए, नानक विघ्न राखे कोए, उस्तत कर में उस्तत मन में कंद निरंकार, कर मन में सत प्यार, निर्मल सनामत पियो सदा से, ला करा जियो नैनो पी ठाकर कर अंसा संग, बिनसे सत्संग, चरण चलो मारुखो पिंद मिटे पाज पियर बिंद, कर हर कर्म सुरुण हर कथा, दर के नानकू जन्मथा, बटभागी ते जन जगमाय, सदा स्थान के गुण गाय, राम नाम जुब करे विचार, से तनवान करे संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा स्थान जानो ते सुखी, एको एक एक पछाने, तुद की उसो जी जाने, नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिने निरंजन जानिया, गौर प्रसाद अपने आस जाए, तके जानो तसना बुझाए, सत्संग हर हर जस कायत, सर्व रोग ते ओ हर जन रायत, अन जन कीर्तन केर बखियान, गृहस्थ मैं सोई निरपान, एको परजे जन की आसा, तके खटिए जम की फासा, पाप रंग की जिसमन भूखा, नानक तसन लागे दुख, जिसको हर प्रमन चित आवै, सो संत सेला नहीं टुडावै, जिस पर अपना कृपा करे, सो सेवक को कृत डरै, जैसा सात सद अपने कार्य में आसमा, सोदत सोद सोद सी जागुर प्रसाद तबूजया, जब देखो तब सख्त मुनान, सो सुख में सोय स्थूल, न कृष्ण में न मरे, अपन चात आप ही करे, अपन जावन दृष्ट अंदृट, आज्ञाकारी तारी सेठ, आप असुर में आप अनख जुगत, रथाप ताप बना सिनाय, कृखण धारण तारे उप्रमंड, रख पे पर प्रताप, आप ज पाए तन अनख जाप, जिन प्रभ जाता सो सुबंत, ससंसार तन मंत, प्रभ के सेव सर्व उदारण, प्रभ के सेवक दुख विसारण, आपे मेला कृपाल, गुर का शब्द पय निहार, उनकी सेवा सोई लागे, जिसनु कृपा करे बड़ भागे,

जो मंदर कोता में तमन तुम गुरखा शाद मन स्तमन जो पखाण नाव चल तराय प्राणी गुर चरण लगत नस्तराय जो अंधकार दीप पर गा गुरदासन देख मन होय बिगास जो महा ध्यान में मार पावे तो साधु संग में जो फटावे तन संतन की बाछो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर्ख काहे बिर लाइय पर लिखे का लिखिया पाई है दू सुपरा देवन हार अवर त्याग तू सच तार जो कश करे सोई सुखमान पूला काय फिर जान कौन बसते आई तेरे संग लवट रहो रस लोभी पतंग राम नाम जा फिर दे माए नान पासे थी कर जाए जिस वखर को लै तू आया राम नाम संतन कर पाया ताजब मान लिहो मन बोल राम नाम हृदय मैं तोल लाद खेप संते संचार वृत्या विख्या जंजा तन तन कै सब कोय मुख उजल हर दर गे सोए एहो व्यापार विरला व्यापारी नानक ताके सब बलहारी चरण साध के तोय तो फी और साध को अपना जियो साध की तूर करो स्नान साध उपर जय कृपान साध सेवा बटपागी पाए साध संगर कीर्तन गाय अनक बिघन ते साधु राखे हर कुन गाय अमृत रस चाखे उठ कई संते दरिया सर्व सुख नानक ते पाया मृत को जी वरण हार भूखे को देवते आधार सर्वन दान जाके दृष्टि माए पर्व लिखे का लैना पाए सब का सब के शब्द का करने जो तस्पन दूसर हुआ न होगा जप जान सदा सदा दर राणी सब ते उच्च निमर करणी कर कृपा को नाम दिया नान सो जन निमरथिया जाके मान गुर की प्रतीत तस्ने आपे हर प्रतीत पात पात सुनिए ते रोए जाके हृदय को होए सच करणी सतां की रायत सच हृदय सतमुखैत साची दृढ़ सचाकार सच वरते साचा प्रसार पार ब्रह्म जन सर कर जाता नान सो जन सत समाता सलोक रूप न देखन रंग केश त्रिकुण ते प्रपन्न तसे बजाए नानका जस होवे सो प्रसाद पदे

राज मेरा दुख मैं दुखी, तप मैं तपी, सर्व ग्रस्त मैं भोगी, त्याई त्याई भगत सुपाय, नानक तिस पुरखा कने अंतर पाया। जाके लीला कीमत नाहे, सगर देव हारे उकाय, पिता का जन्म के जाने पूता, सर प्रोय अपने सूता, सुमत ज्ञान त्यान जन दे, जनदास नाम त्यावे से, त्यो गुण में जाको परमाय, जन्म रे फिर या फिर जाय।

थे कंकार नाना चरत करेखन माए पूर रहो पूर्ण सब ठाए नाना बिद कर बन फनाई अपनी कीमत आपे पाए सब घट तिसके सब खेठा जप जप जिपे नान कर नाम नाम के तारे सवरे जंत नाम के तारे खंड प्रमंड नाम के तारे सिमत बेप्राण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे गाल पताल नाम के तारे सगरे का नाम के तारे प्रिया सब भवन नाम के संग उदरे सुन श्रवण कर कृपा जिसे अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन पाए रूप सत जाकर सत स्थान पुरख सत केर प्रदान करतूत सत सजा की बाणी सत पुरसा मह समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूर सत सत उत्पात सत करणी निर्मल निर्मल जिसे बजाय तसे सब परे सत नाम प्रभु का सुखदाय विश्वास सत नानक गुर ते पाए सत बचन साधु उपदेश सत तेज जा हृदय प्रवेश सत नृत बुझै जे कोई नाम जपत ता की गत होए आप सत किया सब सत ते प्रभु आपे जाने अपनी मितगत जिसकी सृष्ट सो करने हार अवन बूझ करत विचार करते की मित नाक जाने किया नानक जोत पावे सो वरतिया बिस्मन बिस्म पय समाद जिन बूझिया तसा स्वाद प्रभ के रंग राचन रहे गुर के बचन पदार्थ रहे उह दाते दुख काटन हार जाके संग तरे संसार जन का सेव सोट पागे जन के संग एक लबला के गुण गोपिंद कीर्तन जन का पै गुर प्रसाद नान फल पाए सलोक आद सच जुगार सच है पे सच नानक हो से पैसा चाट पदे चरण सत सत पर सुनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पे खनहार

अपने जन का पर्दा ढाके, अपने सेवक ही सर पर राखे, अपने दास को देव बढ़ाए, अपने सेवक को नाम जपाए, अपने सेवक की आप पद राखे, ताकि गत मित कोई न लाखे, प्रभु के सेवक को ना पहुंचाए, प्रभु के सेवक को ते उचाए, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दिस प्रटाया, निकी खीरी मैं कर राख है, पासम करे लास्कर कोट लाख है।

अवरु पास अमित बसारु चरण कमर दमे अवतारु करण कारण सो प्रसमरथ दृढ़ कर गहो नाम हरवत एहो तन संतो होवो भगवंत संत ना कान मरमंत एक आस राखो मन माय सर्प रूख नानक मिट जाय जिस तन को चार कुंट उड़तावै सो तन हर सेवा ते पावै जिस सुख उनत बाचे मीत सो सुख साधु संग परीत जिस सुभा को करे भली करनी सा सुभा पजर के सरणी अन क्यो पावी रूख न जाए रूख मिटै हरे उखद लाए सर्वन दान मैं हर नाम दान जप नानक धर के परवान मन प्रभु दो हर के नाय दह दस्ताव ते आवे ठाए ताको बिघन लागे कोए जाकर दे बसे हर सोए कल ताते ठंडा हर नाम सिमर सिमर सदा सो पाव भव बिन सह पूर्ण होया

चरण कमल राखो मन माहे, जन जन के करुख जाय। आप जपो रानां जपा, सुनत कहत रहत गद पा, सार भूत सधर को नाम। सहज सुपाय नान गुण गाव, गुण गाव त्रि उत्तर समैर, बिन चाय होमे बिख पैर। हुए चंत बसे सुख नार, सास करा सरना समार।

चरण कमसों लागे प्रीत भगत करो प्रभु की नित नीत एक कोटि को आधार नानक मांगे ना प्रसार प्रभु की दृष्ट महान सुख होए हस पावे बिरला कोए जिन चाखिया से जान तृप्ता ने पूर्ण पुरख नहीं डोलान सुपर परे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध के संग परे सरणयान सर त्याग अंतर प्रगास अंदर लिवलाग बटपागी जपया प्रसोए नानक नाम ते सुख होए सेवकी मनसा पूरी पही सतगुर ते निर्मल मत लय जन को प्रभु दयाल सेवकी नो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पिया जन्म मन दुख भ्रम गया ऐश पुनी सरदा सा पूरी राप रहिया सत्संग हजूरे जिसका साधन लिया मलाय नानक भक्ति ना समाय सोकम बिसरै जे काल न पानै सोकम बिसरै जे किया जानै सोकम

पाप पुन्न तै पई कहावत को नरक को सरपंचावत आर जार माया जंजाल होमे मोह परम पै पार दुख सुख मान पमान

जाको प्रभु जीव आप बुझाए, सच नाम सोई जन पाए। सो समदर से तत का बेता, नानक सगल सृठ का जेता। जिय जंतर सबता के हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ। जिस राखै तिस कोय न मारै, सो मुआ जिस मनो बसारै। तिस तारी अबर कहाँ को जाए,

जिस पावे तिस लए मलाए, भगत करे हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मानिया, करण हार नानक एक जानिया। जन लागा हरे कै नाय, तिसके आस न बिरथि जाय। सेवक को सेवा बनियाई, हुकम बूझ परम पद पाए।

दुर्लभ देह का करो उदार। अमृत बचन हर के गुण गाव, प्राण तरण का हे स्वाव। आठ पहर प्रभु को नेरा, मिटे अज्ञान बिनसे अंधेरा। सुने उपदेश हृदय बसावो, मन छे नानक फल पावो। मन छे नानक फल पावो, हलत पल दुल सवार। राम नाम अंतर उतार, पूरे गुर की पूरी दिखिया। जिस मन बसै तार परिखिया, मन तन नाम जपो लिबलाए। दुख दर्द मन ते पो जाए, सच व्यापार करो व्यापारी। दर गैन बह खेप तुम्हारे, एकाटे करखो मन माहे। नानक बहर नया पे जाए, तिस्ते दूर कहाँ को जाए। उबरे राखण हार ते आए, निरपो जपै सगल पो मिटै। प्रभु कृपा दे प्राणी छुटै, जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख। नाम जपत मन होवत सुख।

मत पूरे अमृत जाके दृष्ट दर्शन पेखत उदरत सहट चरण कमल जाके अनूप सफर दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सो तनिहार ताके निकट नयावत काल।

अनंत घट घट व्याप रहिया भगवंत। तरण माहे अकाश प्याल सर्वलोक पूरण प्रतपाल। बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आग्या तैसा कर्म। पौन पानी बैसंतर माहे, चार कुंट दद से समाय। तैसते पैन नहीं कोठा, गुर प्रसाद नानक सो पाव।

छोड़ बेनती करहो सार संग अगन सागर तरफ सार संग अगन सागर तरहो हर तन के पर लियो पंडार नानक गुरपूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सार संग पर परमानंद नरक निफार उदारो जियो।

सुनत कुमावत हो त्योदार, आप तरे लोके निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन दा कर रंग। जय जय शब्द अनाहद बाजे, सुन सुन अनद करे प्रभ गाजे। प्रगटे गोपाल महंत के माथे, नान खुदरे तिन के साथे। शरण जो सुन शरणी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए। मिट गए बैर पय सवरेन, अमृत नाम साथ संग लैन। सो प्रसन्न पय गुरुदेव, पूर्ण होए सेवक के सेव। आर जंजार बिकाते रहते, राम नाम सुरसना कहते।

सर्विचाता की पूर्ण होए प्रदान पुरख परगट सलोए सब ते ऊच पाए स्थान बहु न हुपे अपन जान हर तन खार चले जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए खेम संत रिद नाम निद पुत ज्ञान सर्वत सिद्ध विद्या तप जो प्रवत्यान ज्ञान श्रेठ उत्तम स्नान

मन विश्राम। ओठ पुरात साथ समिटै, संत कृपा ते जम ते छुटै। जा कै मस्त कर्म प्रपाय, सार शरण नानक ते आय। जिस मन बसै सुने लै प्रीत, तिस चन आवे हर प्रचीत। जन मन ता का दुख निवारै, दुर्लभ

हटा दो, फेर बनाओ। कहते ठीक नहीं, फिर हटा दो, पुत्र तो भज गए है। कहते बापू की उम्र ज्यादा हो गई है, वह चले गए, हुण दो रह गए दमाद, भाई रामा जी ते भाई जेठा जी। कहते तुसी बनाओ थड़ा, वह थड़ा बनाने गुरु साहब कहते हटा दो, कहते थड़ा बनाओ, फिर हटा देंगे है। भाई रामा जी भी चले जाते हैं, हुण भाई जेठा जी रह गए, जेठे तू भी चलिया जाता जा तिने उठ गए। कहना महाराज मैं किवें जावां, थोड़ा हुक्म है, तुसी कृपा करो महाराज। महाराज कहते बना फिर थड़ा, फिर थड़ा बन गया, फिर नहीं महाराज कहते फिर हटा दे, फिर बना, कहते फिर कई बार बनाया, फिर हाथ जोड़ के कहता है भाई जेठा, कहते सच्चे पातशाह जिमें तुसानू भौंदा थड़ा बनाया नहीं जाता, मैं कलजुगी जीव है, साडी मत काम करो लोमने मारी है, जिमें तुसी कहने हो उवें थड़ा बनता नहीं है, जाता सुता बख्शो, कृपा करो। हुण भाई जेठा जी गुरु अमरदास महाराज जिवें फरियाद करता है भी जिमें तुसानू भौंदा थड़ा बनाया नहीं जाता। मेरे साथी हरदेव सिंह दवाना, सरंगी मास्टर मनजीत सिंह दद्दा हूरा, साथी ओंकार सिंह कंग बयान इं करते हैं।

कबीरियं बर कन हर शाया बरख परे सरताल चात्रक ज्यों तरसत रहै तिनको कौन हवाल। कबीर चकई जौन सभी शर आए मिले पर पात

कबीर मेरी बुद्ध का जमना करे तिसकार, जिने हो जमुआ सिर जया सो जपया पर विदगार। कबीर कस्तूरी पया पवर पे सब दास, ज्यों ज्यों भगत कबीर की

ठहर गयो राम। आई परी धर्म राय के बीचे तुम ताम। कबीर साकत ते सुकर पला राखे अशगाओ। ओ साकत बपरा मर गया कोई न लह नाओ। कबीर कौडी कौडी जोर के जोरे लाख करोर। चलती बार न कश मिल्यो लई लंगोटी तोर।

कबीर काम परी हर सिमरिए, ऐसा सिमरो नित अमरापुर बासा करहु। हर गया बहुरै बेत, कबीर सेवा को दुए पली।

कबीर जह मार्ग पंडित गए, पाशै परी बहीर इक अवकट काटी राम की, तैं चढ़ रहे हो कबीर।

कबीर सूरज चांद कै उदय पई सबदी गुरु गोबिंद के बिन मिली पलट पई सबकी जैन पौ तह पै नहीं जै पौ तह हर नाहीं कहियो कबीर बिचार कै संत सुनो मन माही कबीर जिन्हों किसु जन्या नहीं तिन सुख नींद बिहाई

कबीर निर्मल बूंदे आकाश की, लीनी पूम मिलाए अनक सियाने पच गए। ना निरवारी जाए

झूठे करते आस मनोरथ कोई न पूरे चाले ऊठ निराश। कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। इति उत कतै न डोलई जिस राखै सिरजनहार। कबीर कहानी पीड़ते

पंखी चले दिसावरी, बिरका सुफल फलंत। कबीर साधु संग परापति, लिखिया हुए ललाट। मुक्त पदार्थ पाई है,

कबीर जात तो है साध परम की, शीश काट कर गुए खेलत खेलत हाल कर, जो किश हुए त हुए। कबीर जो तू है साध परम की, पाकी से ती खेल

ढूंढत डोले अंधगत, हर चिन्हत नाही संत। कह नाम क्यों पाई बिन भगतो भगवंत।

तू रत्ता दुनी स्यों मार्ग सवाई ने जा परया ता लद्या देख फरीदा जोतिया

0: अजना सुती कंत स्यों अंग मुड़े मुड़ जाए जाए पुछो डोहागनी तुम क्यों रहन बिहाए। सहुरे ढोई नाल है नहीं ताओ पिर वातड़ी न पुछई
1: तन सुहाग नाओ सहुरे पैया कंत की कंत अगम यथा नानक सो सुहागणी जो पावे बिप्रवा नाती पोती संभी सुती आए नचिंद फरीदा रही सो बेड़ी हिंग दी गई कथूरी गंद जो बन जांदे ना डरां जेश प्रीत ना जाए फरीदा कितनी जो बन प्रीत बिन सुख गए कुमड़ाए। फरीदा चिंत खटोला वाण दुख बिरह बछावन लेफ ए हमारा जीवना तू साहिब सच्चे वेख बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान फरीदा जित तन बिरह न उपजै सो तन जान मसान फरीदा ए विष गंदला तरिया खंड लवाड़ एक राहिंदे रह गए एक राधी गए उजाड़ फरीदा चार गवाया हंड के

तन कुकेंदी गोर में तै शह ना मिलियास, फरीदा सिर पलिया दाढ़ी पली, मुच्छा पी पड़िया रे मन गले बावले, माने क्या रणिया।

जो देह लदे गाण वे गए विलाड़ विलाड़, फरीदा कोठे मंडप माड़िया एत ना लाए चित, मिट्टी पई तोलवी कोई न होसी मित। फरीदा मंडप माल न लाए मर्ग सतानी चित धर, साई जाए समाल जिथे ही तो वंजना। फरीदा जिन्नी कमी ना है गौण ते कमड़े बिसार, मत शर्मिंदा थी वही साई दे दरबार। फरीदा साहिब दी कर चाकरी दिल दी लाह परांद, दरवेशां नूं लोड़ी ऐ रुखां दी जीरांद।

गुनाही भरिया मैं फिरा, लोक कहें दरवेश। तत्ती तोए ना पल्लवै जे जल टुब्बी दे, फरीदा जो डुहागन रब दी चूरें दी चूरे। जां क्वारी तां चाओ वाही तां मामले, फरीदा एहो पछोताओ वत कुवारी ना थी। कलर केरी छपड़ी आए उलथे हंज, चिंजू बोड़न ना पी मैं उड़न संधी डंज। हंस उडर कोदरे पया लोक विडारन जाए, गैला लोक न जानदा हंस न कोदरा खाए। चल चल गईयां पंखियां जिन्नी वसाए तल, फरीदा सर परिया पी चल सी थके कमल इकल। फरीदा इट सराने पोए सवन, कीड़ा लड़ियो मास कि तड़िया जुग वापरे इकत पया पास। फरीदा पन्नी कड़ी सवनवी, टुटी नागर लज अजराइल फरिश्ता कै करन अठी अज। फरीदा पन्नी कड़ी सवनवी, टूटी नागर लज जो सज्जन पोए पार थे से क्यों आवै अज। फरीदा बेनवाजा कुत्या ये ना भली रीत, कभी चल ना आया पंजे वक्त मसीत। उठ फरीदा उजू साज, सुबह नवाज गुजार जो सिर साई नान में सो सिर कप उतार। जो सिर साई नान में सो सिर की जय काए, कुन्ने हेठ जलाइए बलन संदे थाए।

बेड़े नो कपर क्या करे जे पातन रहे सुचेत। फरीदा गली सो सज्जन वी एक टूढ़ेंदी नाल हा तुखां ज्यों मली ही कारण तन्ना मापरी। फरीदा ए तन भौंकना नित नित दुखिए कौन कन्नी बुझे तेरा कितनी वगै पौण। फरीदा रब खजूरी पक्कियां माखे नई वहन जो जो वन्य डीहड़ा सोय उमर हथ पवन। फरीदा तन सुका पिंजर थिया तलियां खूंडे काग अजय सो रब न बौड़ो देख बंदे के पाग। कागा करंग टंडोलिया सगला खाया मास ई दोए नैना मत शुहो फिर देखण की आस। कागा चूंड न पिंजरा बसे ताई उडर जाहे जित पिंजरा मेरा शाह वसै मास नंत दुखा है। फरीदा गोर नमानी सड करे निकरिया करो सर पर मैथे आमना मरनो ना डरियाओ। इनी लोइनी देख दया केती चल गई फरीदा लोकां आपो अपनी मैं अपनी पई। आप सवारे मैं मिलया सुख होए। फरीदा जे तू मेरा होए रहें सब जग तेरा होए।

कोट न ओट न कोस न छोटा, करत बेकार दो कर चारो, मित्र न पुत्र कुलत्र साजन सख, उल्टत जात बिर की शारो। दीन दयाल पुरख प्रभ पूरन, छिन छिन सिमरु अगम अपारो, श्री पत नाथ शरण नानक जाना। हे भगवंत कृपा कर तारू, प्राण मान दान मग जोहन, हीत चीत दे ले ले पारी, साजन सहन मीत सुत पाई, ताहूं तेले रखी निरारी। तामन पामन कूर कबावन, ए बिद करते औध तन जारी, कर्म धर्म संजम सुच नेमा, चंचल संग सगल बिदहारी। पश पंखी बिरख स्थावर, बहुविध जोन भ्रमें अत भारी, खिन पल चसा नाम नहीं सिमर्यो, दीना नाथ प्राण पत सारी, खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी। नानक संत चरण संग उदरे, होर माया मगन चले सब डारी। ब्रह्मा दिक शिव छंद मनीसर, रसक रसक ठाकुर गुण गावत, इंद्र मनिंदर खोजते गोरख, तरण गगन आवत फुन तावत, सिद्ध मनुख देवे अरदानम, एक तिल ताको मर्म न पावत, प्रे प्रप्रीत प्रेम रस भगती, हर जन ताकै दर्श समावत। तिसै त्याग ज्ञान को जाचै, मुख दंतर संसगल कस जावत, रे मन बूढ़ सिमर सुख दाता, नानक दास तुझे समझावत। माया रंग बिरंग करत प्रम, मोकै कूप गुबार पर्यो है, एता गब आकाश न मावत, बिष्टा अस्त क्रिम उदर पर्यो है। दाह दिश ताए महा बिखिया को, पर धन छीन ज्ञान हरिओ है, जोबन बीत जरा रोग ग्रस्यो, जमदूतन डन मृत मर्यो है, अनक जोन संकट नरक पुंचत, सासन दुख गर्त गर्यो है। प्रेम भगत उदरै से नानक, कर कृपा संत आप करियो है। गुण समूह फल सगल मनोरथ, पूर्ण होई आस हमारी, औखद मंत्र तंत्र पर दुख हारू, सर्ब रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मत्सर तृष्णा, बिनस जाहिं हर नामे उचारी, इशनान दान तापन सोच क्रिया, चरण कमल हृदय प्रवतारी। साजन मीत सखा हर बंधप, जी तान प्रभ प्राण आधारी, ओट गही स्वामी समर्था, नानक दास सदा बलहारी।

न सक सबूर चलें हर पंथ पग, नानक रोग दुख अग मोष दे हर नाम खग। उद्दम कर लागे बहु भांति, बिचरै अनक शास्त्र बहु खटुआ। पसम लगाए तीर्थ बहु भ्रमंते, सूखम दे बंदें बहु जटुआ।

अनक पांत थाटे कर थटुआ। सवैये महले पहले के एक ओंकार सत गुर प्रसाद एक मन पुरख ते आए बरदाता संसार सदा बिख्याता। तास चरण ले हृदय बसावो तो परम गुरु नानक गुण गावो। गावो गुण परम गुरु सुख सागर दुर्त निवारण शब्द सरे। गावे गंभीर धीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान तरे। गावे इंद्राद भगत प्रहलाद आत्मरस जन जान्यो। कब काल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन माण्यो। गावे जनकाद जुगत जुगेश्वर हर रस पूर्ण सर्ब कला। गावे सनकाद साध सिधाधक मुन जन गावे अशाल शला। गावे गुण तोमे अटल मंडल वै भगत भाई रस जान्यो। कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन माण्यो। गावे कपिलाद आदि जोगेश्वर अपरंपर अवतार वरो। गावे जम दगन पर सरमेश्वर कर कुठार रग तेज हरियो। उद्धो अक्रूर बिदर गुण गावे आत्म रस जिन जान्यो। उद्धो अक्रूर बिदर गुण गावे सर्वात्म जिन जान्यो। कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन माण्यो। गावे गुण बरन चार खट दर्शन ब्रह्मा दिक सिमरंत गुणा। गावे गुण शेष सहस जे बारस आदि अंत लिव लाग तुना। गावे गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जान्यो। कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन माण्यो। राज जोग माण्यो बस्यो निरवैर दंतर सृष्ट सगली उदरी नाम ले तरियो निरंतर। गुण गावे सनकाद याद जनकाद जुगन लग। धन धन गुर धन जन्म सकियत पलो जग। पातालपुरी जयकार धुन कब जन कल वखाण्यो। हर नाम रसक नानक गुरु राज जोग तै माण्यो।

द्वापर कृष्ण मुरार कंस करतार्थ कियो। उग्र सैन को राज भगतां जन दियो। कल युग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो। श्री गुरु राज अविचले अटाले आदि पुरख फुरमायो। गुण गावे रविदास भगत जय देव त्रिलोचन। गुण गावे रविदास भगत जय देव त्रिलोचन। नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन। भगत बेण गुण रवै सहज आत्म रंग माण। जोग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभु अवर न जाने। सुखदेव परीक्षित गुण रवै सुखदेव परीक्षित गुण रवै सुखदेव परीक्षित गुण रवै। गौतम रिख जस गायो। कब कल सुजस नानक गुरु नित नवतन जग शायो। गुण गावे पायाल भगत नागाद पयंगम। महादेव गुण रवै सदा जोगी जत जंगम। गुण गावै मन ब्यास गुण गावै मन ब्यास। जिन भेद व्याकरण विचारिया ब्रह्मा गुणी उचरै। जिन हुकम सब सृठ सवारिया। ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण समझाण्यो। जप कल सुजस नानक गुरु सहज जोग जिन माण्यो। गुण गावै नवनाथ धन गुर साच समायो। मन दाता गुण रवै जेन चक्र वै कहायो।

दुर्बापरूरोऽवङ्गर दुर्बापरूरोऽवङ्गर गुरु नानक जस गायो कब कल सुजस नानक गुर कट कट सहज समायो। सवैये महले दूजे के एक ओंकार सत गुर प्रसाद सोई पुरख धन करता कारण करतार करण समर्थो सत गुरु धन नानक मस्तक तुम धरियो जिन हथो ਤਾਂ ਧਰਿਓ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਸਹਿਜ ਅਮਿਆ ਬੁੱਠ ਛੱਜ ਸੁਰ ਨਰ ਗਣ ਮੁੰਨ ਬੋਹਿ ਅਗਾਜੂ ਮਾਰਿਓ ਕੰਟਕਾ।

त्राय तो पासरण आप निराण कराता चक में परवरियो निरंकार अकार ज्योत जाक मंडल करियो। जय कहते प्रपूर शब्द दीपक दीपायु, जय सिख संग्रहु तत् हर चरण में रायो। नानक कुल निमल अवर्तरियो,

अपार अपर परे अपार परे पायो अपार हृदय अंतर धारियो दुख भंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारियो सदा चाहे हर पाए प्रेम रस आपे जाने सतगुर के प्रसाद सहज सेती रंग माणे नानक प्रसाद अंगद सुमत गुर अमर वरतायो गुरु रामदास कर उचरै तै अटल अमर पद पायो अमर फल पायो सरोक सरोपर बसे मैं रस असम प्रगास है मृत सांत उपजय दुरत दुरंतर नास है सुख सागर पायो दिनत हर मगन फुटै संजम सत संतोख शीस नाम फुटै सतगुर प्रमाण बिद नु सिरियो जाक जस्तुर बजायो गुरु रामदास कर उचरै तै अपै अमर पद पायो जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो धन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो

संपहो जगत गुरबचन त्रायो अवगत गोचर परफार मन गुर शब्द वसायो गुरु रामदास करो चरै तै जगत उदाहरण पायो जगत उदाहरण अमृतान भक्ते पवतारण अमृत बूंद हर नाम बिस्कि बिखै निपारण सहज त्रुवर फलियो ज्ञान अमृत फल लाके गुर प्रसाद पाई है धन ते जन फट पाके ते मुक्त पय सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुरु रामदास करु चरै तै शब्द निशान बजायो सेज सदा सहज सवान संता संतोष राचो सदा सिर सुनाओ सो है गुर शब्द समाचो नाम टेक संगात बो है अजोनियो पल अमल सतगुर संग निवास गुर अमरदास गुर रामदास करु चरै तो सहज स्वरूप प्रभास गुर जिन को सो प्रसन्न नाम हर दिन वासै जिन को गुर सो प्रसन्न दुरत दुरंतर नासै गुर जिन को सो

नियम ज्योते सब सुखित उत तुम बंचो गुरु कर गुरु कर गुरु जप प्राणियम गुरु कर गुरु कर गुरु कर गुरु कर गुरु कर गुरु जप सतकार अगम गुण जान तान हर मन तरु ध्यान एनस करहु बचन गुरदे तहर फुन गुरु जल बिमल अथा भजन करो संत गुरसिख तरहु नाम सच रंग सार सदा निरपय निरंकार निरपो जपै प्रेम गुर शब्द रस गुर शब्द भगत दृढ़ भगत हर मुग्ध मन प्रम तजो नाम कुरमुख भजो गुरु कर गुरु कर गुरु जप सतकार गुरु कर गुर करहो गुरु हर पाईऐ आदत गुर गह कंबीर प्यंत हर नाम नक हीर मन मिलत लवलाईऐ फन गुरु परमन सरस करत कंचन परस मै दुरमत हित शब्द गुर त्याईऐ अमृत प्रवास छटकंत सद्वार जिस ज्ञान कौर बिमल सार संत सखनाई है नाम निरपण तान हर और धरो गुरु कर गुरु गुरु कर गुर करो गुरु हर पाई है गुरु कर गुरु कर गुरु जप मन रे जाके सेव शिव सिद साधक सुर असुर गणे तरे तेतीस गुर बचन सुन कन रे फुन तरे ते संत संत हित भगत गुर गुर करे तरियो प्रहलाद गुर मिलत मन जन रे तरे मिलत मुन जन रे तरहे नारद सनकाद हर गुरमुख तर है एक नाम लाग तजो रस अन रे दास बिनत कह नाम गुरमुख लहै गुरु कर गुरु कर गुरु जप मन रे श्री गुरु साहब सयु पर करी कृपा सत युग जंतरु पर श्री प्रहलाद भगत उदरिंग हस्त कवन माथे पर तरियं अलख रूप जी लखन जाई साधक सहसर सरणाय गुर के बचन साची धारु मानस जन दिन सतारु गुर जहाज खेवट गुरु खुरपिन तरिया न कोय गौर प्रसाद प्रपाई है खुरपिन मुक्त न होए गुरु नानक निकट वसे बनवारी तिन रहना थाप जो जगतारी लहने पंत तरु का किया अमरदास परे को दिया तेन श्री राम दास थोड़ी सरथा प्यो हर का नाम अखे निद अप्यो अप्यो हर नाम अखे निद चोह जुग गुरसेवा कर फल लहियं बंद जो चरण सण सो पावे परमानंद गुरमुख कहियं

आनंद नित मंगल गुरदर्शन सफल संसार संसार सफल गंगा गुरदर्शन परसन परम पवित्र गते जीते जम लोक पत जे प्राणी हर जन सेव गुर ज्ञान ते रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ घर मुन बंश जाकी शरण सतगुर सेव लाखर जाकी श्री राम दास तारण तरण संसार अगमन सागर हर संसार सागर संसार अगम सागर तुलहा हरनाम गुरु मुख पाया जग जन्म मरण पका ए आई ही प्रीत प्रतीत ही आई।

देखो काल ककाल निरंजन जचना, गुर प्रसाद पाइय परमार्थ, सत्संगत सीती मन खचना, किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहगुरु तेरी सब रचना। अगम अनंत अनादि जिस कोई न जाने, शिव बिरंच तर ध्यान नत है जिस वेद बखाने, निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई, भंजन गढ़न समर्थ तरण तारण प्रभ सोई, नाना प्रकार जन जग कियो, जन मत रस ना रसै, श्री सतनाम करता पुरख गुरु रामदास चित्त बसै, गुरु समर्थ कह करिया, त्रुबुद्ध समत समारण कौ, फन त्रम तुजा फैरंत सदाग, पुंज तरंग निवारण कौ, मथुरा जन जान कही जी साच, सो और कछु न बिचारन को, हर नाम बोहित बड़ो, कल में भव सागर पार उतारन को, संतत ही सत्संगत संग सुरंग रति जस गावत है, त्रम पंतर उतरनी तर आप रहे लिव धारन तावत है, मथुरा पान भाग भले उनके, मन निश्चित ही फल पावत है, रब के सुत को तिन त्रास कहां, जो चरण गुरु चित लावत है, निर्मल नाम सुधा परपूर्ण शब्द, तरंग प्रगटित दिन अगर, गहर गंभीर अथात बड़ सो भर, सदा सब्यद रतनागर, संत मराल कर कंतु हल, संत मराल करें कंतु हल, तिन जम त्रास मिट्यो दुखागर, कलयुग दुरत दूर कर बे कौ, दर्शन गुरु सगल सुख सागर, जा कुमन ध्यान तर फेरत सगल जुग, कब हूं को पावे आत्म प्रकाश कौ, बीत बाणी सहत बिरंच जस गावे, जा कु शिव मन गहन तजात कम्बिलास कौ, जा को जोगी जति सिद्ध साधक, अनेक तप जटा जूट भेख किए फिरत उदास को, सुतैन सत गुर सुख पाए कृपा धारी जी, नाम की बढ़ाई दई गुरु रामदास को, नाम निधान ध्यान अंतरगत, तेज पुंज ते लोग प्रगासी, दीखत दर्श भटक भ्रम भजत, दुख पर हर सुख सहज बगासी, सेवक से

वाह वाह करते आयो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो। नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा

गुरु रामदास दर्शन परस कै मधुराय अमृत बैण। मूरत पंच परमान पुरख गुर अर्जन पिखो नैण। सत रूप सत नाम सत संतोख धर्यो उर, आद पुरख प्रतख लिख्यो अक्षर मस्तक तोर। प्रगट जोत जग मगै तेज भूमंडल छायो। पारस परस परस परस गुर गुरु कहायो। पन मथुरा मूरत सदा थिर लाए ते सन्मुख रहो। कलयुग जहाज अर्जन गुरु सगल सृट लगबे तरो।

गुरु जोत अर्जन माहे तरी, जग और न जाहे महातम मैं, अवतार उजागर आन कियो, तिन के दुख कोटक दूर गए, मथुरा जिन अमृत नाम पियो।

परत हृदय गुरु अर्जन कै हर पूरन ब्राह्मण वास लियो। जब लौ नहीं पाग लीलाुदय, जब लौ नहीं पाग लीलाुदय, तब लौ प्रमते फिरते बहुतायो। कल कोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो। तत विचार यह मथुरा, तत विचार यह मथुरा, जग तारण को अवतार बनायो। जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन कर बना आयो। काल समुद्र पर रूप प्रकट हर नाम उदाहरण, बसें संत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारण। निर्मल पीके अपार तास बिन अवर न कोई, मन बच जिन जाने उपय होते समसर सोई। तरन गगन नवखंड में जो स्वरूपी रहो, पर पन मथुरा कश भेद नहीं, गुर अर्जन प्रतख हर। अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नावे, नित पुराण बाचिए वेद ब्रह्मा मुख गावे। अजय चवर सिर टुले नामी अमृत मुख लियो, गुर अर्जन सिर क्षत्रिया परमेश्वर दियो। मिल नानक अंगद अमर गुर, गुर रामदास हर पै गयो। हर बंस जगत जस संचरियो, सो कवन कह श्री गुरमयो। देवपुरी में गयो परमेश्वर पायो, हर संघासन दियो श्री गुरु तां बैठायो। रहस कियो सुर देव तो ही जस जय जय जंपै, असुर गए ते भाग पाप तन भीतर कंपै।

सील संतोख का रखे धर्म बंधन तोड़े होवे मुक्त सोई ब्रह्मण पूजन जुगत खत्री सो जो कर्मा का सूर पुन दान का करे शरीर खेत पछाण बीजे दान सो खत्री दरगाह परवान लभ लोभ जे कूड़ कमावे अपना कीता आपे पावे तानत पाए तनूर ज्यों बालन हड न बाल सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर प्री समाल सबनी घटी शाह वसै शाबिन घट न कोई नानक ते सोहागणी जिन्ना गुरमुख प्रगट होए।

सीता लै गया दसरू लक्ष्मण मुह शराप, नानक करता करण हार कर वीखे था प्यो थाप। मन में चूरे राम चंद, सीता लक्ष्मण जोग हनुमंतर आराध्या।

लाहौर शहर जहर कहर सवा पहर महला तीजा। लाहौर शहर अमृतसर सिफती दा घर महला पहला। उद्दू साह है क्या निशानी तोट ना आवे अन्नी। उदोसी करे ही उठी कुणे रन्नी तम्मी। सती रन्नी करे स्यापा रोमन कूड़ी कम्मी। जो ले वैसो देवै नाही खट्टे दम सहमी। पबर तू हरिया वला कमला कंचन वाना। कै दोखड़ै सड़ियों ए काली होइया देहुरी। नानक मैं तन भंग जाना पानी ना लहा। जैसे ती मेरा संग जित डिठै तन परफड़ै चढ़ै चवगण वाना।

नानक सच्चा एक दार बीबा पर हरियाए, नानक जह जय मैं फिरयो तह तह साचा सोए, जह देखा तह एक है गुरमुख प्रगट होए। दुख विसारण शब्द है जे मन विसाए कोए, गुर कृपा ते मन वसै करम प्राप्त होए। नानक हो करते खप मुए, खूहन लाखे संख सतगुर मिले सोबर साचे शब्द लंख। जिन्ना सतगुर एक मन सेविया तिन जन लख उपाए, गुर शब्दी हर मन वसै माया की भुख जाए। से जन निर्मल उजलै जे गुरमुख नाम समाए, नानक होर पातशाहियां कूड़ियां नामृते पातशाह। ज्यों पुरख कर भक्ति नर है हत रुचै भक्ति पाए, बहुरस सारणे सवार दी खट रस मीठे पाए।

कोई मन मुख बोले अंधले तस्मे अग्नि का पास बाणी सरत न बुझनी शब्द न करे प्रगास उन्ना अपनी अंदर शुद्ध नहीं गुर बचन ना करे विसास ज्ञानी अंदर गुर शब्द है नित हर लेप सदा विकास हर ज्ञानिया की रखदा हो सद बलहारी ताज़।

हर गुरमुख कृपा धारियन जन बिछड़े आप मिलाए। जन नानक तिस बल हारणे जो सतगुर लागे पाए। नाम लगे से उपरै बिन नावे जमपुर जाए। नानक बिन नावे सुख नहीं आए गए पछताहे। चिंता तावत रह गए ता मन पिया आनंद।

गाढ़ गाढ़ में हर जो बसै, संतन के हो पुकार, कहो नानक ते पज मना, पौने दे उतरे पार, सुख दुख जे परस नहीं, लोभ मोह अभिमान, कहो नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान, उस्तत निंदया नाहे जे, कंचन लो समान, कौ नानक सुन रे मना, मुक्त ताहे तै जान, पै काहू को देत न पै मान त्यान, कौ नानक सुन रे मना,

लियोपेख बैराग कौ नानक सुन रे मना ते नर माथे पाग जय माया ममता तजी सब ते पयो दास कौ नानक सुन रे मना ते काट ब्राह्मण वास जे प्राणी हो मैं तजी करता राम पशान कौ नानक वै मुगत नर

बोधा उपजय बिन सनीत जागर चना तैसे रची कौ नानक सुन मीत प्राणी कछु न चेतई मद माया कैयंद कौ नानक बिन हर भजन परत ताहे जम्बंद जौ सुख को चाहे सदा शरण राम की ले कौ नानक सुन रे मन दुर्लभ मानुख दे माया कारण तावही मूर्ख लोग अजान कहो नानक बिन हर भजन बिरता जन्म सिरान जो प्राणी निस दिन पजै रूप राम तेह जान हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान मन माया मैं फादरयो बिसरयो गोबिंद नाम कौ नानक बिन हर भजन जीवन कौन काम प्राणी राम न चेतई

दुख में संग न कोय, कौ नानक हर पज मना अंत सहाई होए। जन्म जन्म पर मत फेरियो, मिट्यो न जम को त्रास, कहो नानक हर पज मना निरपै पावै बास। जतन बहुत मैं कर रियो, मिट्यो न मन को मान, दुर्मत स्यो नानक फदेयो, राख लियो भगवान। बाल जवानी और बिरद फुन, तीन अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन, बिरता सब ही मान। करणो तो सो ना कियो,

झूठ मान कहाँ कर, जाग सुपने जो जान, इन मैं कश तेरो नहीं, नानक के हो बखान। गर्भ करत है देह को, बिन सैशन में मीत, जह प्राणी अर जस कहो, नानक ते जग जीत। जे काट सिमरन राम को,

संगत जी सारे करो कृपा प्यार नाल पाएगी। ये संगत उन्हां नूं नसीब हुंदी है जिन्हां दे कर्म जागदे हन।

जो जो दिस है सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुर जोगी रहाओ। जेहवा रोग मीन ग्रस्यानो बासन रोग पवर बिन सानो हेत रोग का सगल संसारा त्रिविद रोग मैं बदे बिकारा रोगे मरता रोगे जन्मे रोगे फिर जोनी परमे रोग बंद रहन रति न पावे बिन सतगुर रोग कतै ना जावे पार ब्रह्म जिस कीनी दया बां पकड़ रोगों काढ़

0: पति उदाहरण पै हरण हरि अनाथ के नाथ कहो नानक तै जानिए सदा बस्त तुम साथ तन तन जे तो कहो दियो तास्यो निहो नकीन कहो नानक नर पाप रे अब क्यों डोरत दीन तन तन संपै सुख दियो अर्जह नीके ताम कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहिन राम
1: गावण तोनो जति सति संतोखी गावण तोनो वीर करारे गावण तोनो पंड पण रखी सुर जो जो वेदा नाले गावण तोनो मोहनिया मन मोहड़ सुरगम आश प्याले गावण तोनो रतन पाए तेरे अरसा तीर नाले गावण तोनो जोध मांबल सूरा गावण तोनो खाणी चारे गावण तोनो खांड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे से तोनो गावण जो तुद पावण रते तेरे भगत रसाले होर गेते तोनो गावण से मैं चेतनावण नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा सच नाई है भी हो सी जाए न जासी रजना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिनो पाई कर कर देखे की ताया पणा जेते दी वड़ियाई जो दे पावे सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई सो पातशाह साह पात साहिब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखे सब कोए केवड़ वड्डा डीठा होए कीमत पाए न कहा जाए कहने वाले तेरे समाए वड़े मेरे साहेबा गैर गंभीरा गुणी गहीरा कोई न जाने तेरा किता केवड़ चीरा रहाओ सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई कहन ना जाई तेरी तिल वड़े आई सब सात सब तब सब चंगे आईया सिद्धा पुरखा क्या वड़े आईया तोद वेण सिरी किरण ना पाईया करम मिले नहीं ठाक रहाईया आखण वाला क्या विचारा सिवती परे तेरे भंडारा जेह तो दे तिसे क्या चारा नानक सच सवार नरा आसा मल